जोखिम टाड़ने भय पारी पारी झाड़ी बुट्यान घास राख्नु हुन्न साँझ पर्दा घर छोड़ी गाउँ

0: Cina saking bagus.
1: विश्वकै पुरानो तथा सम्पूर्ण चिकित्सा पद्धतिको जननी आयुर्वेद, संसारकै शक्तिशाली जडीबुटी नेपाली। जब नेपाली जडीबुटी आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिमा प्रयोग हुन्छन् अनि हासिल हुन्छन् जस्तो सुकै रोगमा पनि सफलता। नेपाली जडीबुटीको चर्चा अनि रोगमाथि हासिल भएको सफलताको वास्तविक जीवन कथा, कार्यक्रम मेरो देश मेरो आयुर्वेद। यस कार्यक्रमको सहयात्री
2: वैदिक आयुर्वेद सेवा प्राली, तिलोत्तमा 5 मणिग्राम, रूपन्देही शान्ति स्कूल अगाडि। मोबाइल 9857059934। लाइन्स चोक नारायणगढ चितवन। मोबाइल 9855050934।
3: ए बाबु, हतियार छ, टर्च बालेर जाऊ।
4: आ पर्दैन आमा, त्यही पुग्ने त हो, एकैछिन त हो नि, म पुगेर आइहाल्छु के।
3: बर्खाको बेला छ, अध्यारोमा हिँड्दा सर्पले टोक्न सक्छ। उज्यालो बालेर जुत्ता अझ भए बुट लगाएर हिँड्नु पर्ने, नत्र त सर्पले टोकिहाल्छ नि।
4: है, बल्ल सम्झे, सर्पको टोकाइबाट बस्न त खेतबारी र झाडीमा जाँदा गम बुट लगाउने, सुत्नु अघि ओछ्यान टकटक्याउने र झुल हालेर मात्रै सुत्ने बानी बसाल्नु पर्छ भनेर मिसले भन्नुभएको थियो।
3: अनि सर्पको टोकाइबाट जोगिन घर वरिपरि सफा राख्ने, घाँस पराल र दाउरा झिक्न जाँदा सचेत हुने भनेर मिसले भन्नुभएन?
4: भन्नुभयो नि, मिसले त घर वरिपरि डुलोहरू पुर्ने र ताल तलैया नदीनालामा विषालु सर्प हुन सक्ने भएकोले नजाने पनि भन्नुभएको थियो।
3: हो, सावधानी अपनाउँदा सर्पको टोकाइबाट बस्न सकिन्छ, सानो लापरवाहीले ज्यान जान सक्छ।
5: सतर्कता अपनाउने गरौं, सुरक्षित बनौ।
6: नेपाल सरकार, विज्ञापन बोर्ड।
7: डेंगू से बचे की खंती मच्छर के काटे से बचब ही सर्वोत्तम उपाय होए। पूरा शरीर ढके वाला कपड़ा पहना जाए। सूते के समय मच्छर से बचे खंती मच्छरदानी के प्रयोग करा जाए। घर के आसपास और खेत बारी में काम करे के समय मच्छर के काटे से बचा जाए। झाल और दरवाजा में जाली लगाई के बंद करा जाए। मच्छर उत्पन्न न हुए देख लिए घर के आसपास सफा रखा जाए और पानी जमे के ना देवा जाए। अचानक बुखार और ज्यादा सरदर्द भय में तुरंत नजीक के स्वास्थ्य संस्था या अस्पताल में चचावा जाए।
8: अनुरोध है, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, गृह मंत्रालय, राप्ती उपत्यका, देवखुरी, नेपाल।
9: विश्व शांति को मोहन, लुम्बिनी शांति को आवाज, रेडियो।